0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

वास्ताई आका मौला अली लजपाल दा सदकाई जाहरा दिशान वे मिसाल दा वास्ताई आका मौला अली लजपाल दा

0: नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses. Free health and social care courses. Free childcare courses. Free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.

0: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043। क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
1: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
0: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
1: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रेडफर्ड।
0: बुकिंग्स और मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 012-747-33732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 01274735043.

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कब्र को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस

0: नाम याद रखें, मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।
1: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।

0: ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कन सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service, raise your organisation's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

दुआओं के फूल आपके नाम करते हैं, आपकी चाहतों को, आपकी मोहब्बतों को सलाम करते हैं। बन जाए आपकी ज़िंदगी खुदा की नेमतों और बरकतों से जन्नत, यही दुआ हम सुबह, दोपहर और शाम करते हैं। 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है। शहनाज मंसूर आपकी खिदमत में हाजिर है। कबूल कीजिए मेरा मोहब्बत भरा चाहत भरा खलूस के अता गहराइयों से अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेरी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप सभी को। फ्राइडे का मुबारक दिन है, हमारी मुलाकात होती है फ्राइडे को 11 और 2 के दौरान। हमेशा हमेशा आप हमारे दिलों में रहते हैं, आपकी दुआएं लेकर जाते हैं और आपकी दुआएं ही हमें यहाँ पर फिर से लेकर आती हैं। आज की भी आप ही की दुआओं का असर है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके साथ साथ, और हमारी दुआएं हमेशा आपके लिए रहती हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको और आपके साथ खूबसूरत तमाम रिश्तों को, आपके अहलो आबाब को, आपके बच्चों को, आपके बुज़ुर्गों को, आपके हमसायों को, आपके दोस्तों को, जो भी आपके करीबी हैं, उन सबको अल्लाह पाक हमेशा उन तमाम नेमतों से नवाजे जिनमें सबके लिए खैर बरकत हो, राहत हो, तंदुरुस्ती हो, सुकून हो, खुशहाली हो, मोहब्बत हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह पाक आप तमाम की ज़िंदगी के हर लम्हे को खैर वाफियत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक आपको

0: आपकी दुआओं से हम सब खैरियत से हैं, हमारे मिजाज भी ठीक हैं और बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट हैं और आपसे मिलने यहाँ पर आए हैं 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुन रहे हैं पूरी दुनिया में, 100.6 FM पे आप सुन रहे हैं कालदेडेल में और डीएबी के जरिए ब्रेडफोर्ड फॉर लीज मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर बर्नली और डार्विन और मिल्टन कीन्स के इलाकों में आप हमें सुन पाते हैं और मैं हूँ शहनाज मंसूर आपके साथ रहूँगी दोपहर दो बजे तक। आप जानती हैं कि यादों का सफ़र होता है, पुराने सदाबहार गीत होते हैं और आप हमेशा हमेशा से हमारे हम सफ़र रहे हैं और आज भी इसी उम्मीद और यकीन के साथ आए हैं, आपका साथ पाएंगे, आपका प्यार पाएंगे और आपकी दुआओं के संग संग आगे बढ़ेंगे। फिलहाल तो हमें आपको जो है वो सुनवाना है हिट ऑफ द आवर और फिर उसके बाद लौटेंगे आपके पास।
1: The hit of the hour is brought to you by Sophie Jewelers with a wide range of designs of all kinds of jewelry. Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-014.

0: अकेले तेरे संग जीना तेरे संग मरना गोरिया रे बहुत ही खूबसूरत दो गाना हिट ऑफ द आवर में आप सुन रहे थे और अब आपको टाइम बताते हैं और उसके बाद छोटी सी ब्रेक लेंगे
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का टाइम है 11:16 यानी कि 16 मिनट हो चुके हैं 11 बजकर बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब मिलते हैं उस पार

0: हुसैन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.

चल मेरे भाई, चल चल मेरे भाई। जी हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत दो गाना था। दो भाइयों का प्यार इसमें आपने सुना, और हकीकत में भी यही होता है कि भाई ही भाइयों के, वो कहते हैं ना कि बाजू होते हैं, और बहनें जो है बहनों की ही जो है वो गमगुसार होती हैं। हर कोई छोड़ जाता है, रिश्तेदार, दोस्त, अहलो अहबाब, लेकिन अपने बहन भाई हमेशा हमेशा मुश्किल वक्त में आपके साथ होते हैं। ये बिल्कुल हकीकत है। बहुत ही प्यारा गीत, बहुत ही प्यारी मूवी से लिया गया था, और इसमें हम सब के मन पसंद जो है अदाकार भी मौजूद थे। आपको ये गीत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। स्मीना जी, आपका टैक्स मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम को सुन रही हैं हमेशा की तरह, और आपने तमाम दोस्तों को, तमाम साथियों को, सनराइज की टीम को अस्सलामुअलैकुम कहा है, और जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा एक बहुत ही प्यारी सी बहना ने भी प्रोग्राम में शिरकत की, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। कोई बात नहीं, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया चंद लम्हे, और प्रोग्राम के हवाले से आपने कहा कि आपको हमारे गीत, हमारी चॉइस बहुत अच्छी लगती है, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पसंद को पसंद करने का। अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको जुमा मुबारक, और आपके तमाम दोस्त को और अहले अहबाब को जो भी सुन रहे हैं, आपकी जानिब से बहुत बहुत जुमा की मुबारक, और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। हीरा खान जी, आपसे भी बात हुई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमेशा की तरह हमारे बहुत ही हंसमुख भाई हैं, हंसते हंसते आते हैं, और बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ अपने तमाम दोस्तों को दुआएं देकर जाते हैं। उनकी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, जिनमें अभी मेरे पास, मैंने निकाली नहीं है लिस्ट उनकी, लेकिन उन आपके तमाम दोस्तों के नाम हम गीत भी लगाएंगे, और अगले घंटे में तमाम पैगाम भी आपके तमाम दोस्तों तक पहुँचाएँगे। आपने सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम कहा है, सनराइज़ की टीम को दुआएँ भेजी हैं, और तमाम सामीन को भी दुआएँ भेजी हैं। जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम साथियों का जो कि हमेशा हमारे हम सफ़र होते हैं, हमारे साथ साथ होते हैं सनराइज़ रेडियो पे 103.2 FM पे और 100.6 FM पे। कालदर डेल में आप हमें सुन रहे हैं, और क्रॉस यॉर्कशायर DAB के जरिए किसली, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हालिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन और एक्रिंगटन, और मिल्टन कीज में बहुत जल्द आप हमें सुन पाएंगे। इसके अलावा एक और खुशखबरी है लंदन में रहने वालों के लिए, जो कि अनाउंसमेंट हमारे तमाम प्रोग्राम्स में हो रही है, और आप न्यूज़ में भी सुनेंगे। वेंसडे को, 2nd of September को, जी हाँ जी, लंदन, वेस्ट लंदन में सनराइज आ रहा है आपके लिए, और हमारी तमाम नशरियात को आप सुन पाएंगे दोपहर को, जी हाँ जी, कितने बजे जी हाँ, आफ्टरनून को आप सुन पाएंगे 12 PM मिड डे को। और इसके अलावा इसकी जो है वो आपको ख़बरों में भी इसके मुतालिक आपको बताया जाएगा, याद दहानी कराई जाएगी, ताकि आप मिस ना कर सके हमारे न्यू लॉन्च को लंदन में। तो आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि हमेशा हमारा साथ निभाते हैं, हमारे साथ साथ होते हैं, और हमारे सफ़र को खूबसूरत बनाते हैं। आप सभी को वेलकम कहते हैं, जी आए यानी खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग। और हमारा नंबर है 01274306666, डेडिकेशंस के लिए अगर आप भी आना चाहें हमारे पुराने सदाबहार गीतों के साथ, पुरानी आवाज़ों के साथ, अपने नाम को या अपनों के नाम को जोड़ना चाहें, तो नंबर है 01274306666।

किसी से रबते इतने शदीद हो गए, किसी से रबते इतने शदीद हो गए कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए। वो एक शख्स जिसको हमारा पीर होना था, वो एक शख्स जिसको हमारा पीर होना था, सुना है वो आज किसी के मुरीद हो गए।

छूट गया बालम, हाय साथ हमारा टूट गया। बहुत ही खूबसूरत दो गाना मुकेश और लता जी की खूबसूरत आवाज़ों में, सदाबहार गीत सदाबहार आवाज़ों में आपने सुना 103.2 FM पे और www.sunrise.fm पे सुन रहे हैं पूरी दुनिया में। आप तमाम का बेहद बेहद बेहद शुक्रिया जो कि हमारे प्रोग्राम की जीनत बन चुके हैं, हमारे हम सफ़र हैं, हमारे साथ साथ हैं, प्रोग्राम को इंजॉय कर रहे हैं, गीतों को इंजॉय कर रहे हैं और हम आपका साथ बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं और आपके साथ साथ ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत होता है। हमेशा आपके साथ साथ आगे बढ़ना हमें अच्छा लगता है, आपका साथ बहुत प्यारा है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं अपने छोटे से भाई, जी हाँ, नदीम मंसूर भाई का। आज पहली बार उन्हें सुनते तो हम रहते हैं रेडियो पर हमेशा, आमिर शहजाद के प्रोग्राम में और परवेज़ खान के प्रोग्राम में भी हम उन्हें सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारी आवाज़ के मालिक हैं। आज पहली बार उनसे बात हुई, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत हस्ती हैं और बहुत ही आला अखलाक के शख्स हैं। उनकी शख्सियत से, उनके अल्फाज से, उनके तलफ़ से पता चल रहा था कि वो कितने अजीम इंसान हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके अपने कानों में आपकी आवाज़ डायरेक्ट सुन के अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप काम पर हैं और प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपने जिस गीत की फरमाइश की है ज़रूर सुनवाएंगे, कोशिश करेंगे कि वो हमें मिल जाए अगले घंटे में, तो आपके गोशे गुजार करेंगे। आपकी यादाबरी का बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानिब से, आपके तमाम दोस्तों को, तमाम साथियों को, सनराइज़ की टीम को बहुत बहुत दुआएं और जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। सुनते हैं किशोर कुमार को, दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गज़ल है सनम,

0: ये प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरीद। मेरी तरह जिंदगी भर तड़प लो, फिर आना उसके करीब। बहुत खूब, बहुत ही खूब कुमार। ये किशोर कुमार की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे, और शायर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये हर किसी के बस की बात नहीं होता होता प्यार करना। प्यार करना किसी किसी का काम होता है, कोई कोई निभाता है। बहुत ही खूबसूरत गीत और बहुत ही प्यारी आवाज़ किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत आपने सुना 103.2 FM पे। और अब ऐसा है कि टाइम चेक का वक्त भी आन पहुंचा है, इसके अलावा जो है वो छोटी सी ब्रेक भी आनी है। तो ऐसा करते हैं, आपको टाइम बता देते हैं, ब्रेक लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का टाइम है 11:44, 44 मिनट हो चुके हैं 11 बजकर। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं उस पार।

0: गलियां गलियां घूमी ते पैरें दी जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: ऋषि's vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details call Benny 07901 831165. Raman 078341 77866. Usha 0793178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
3: The Asian Station, Sunrise Radio.
4: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewellery. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274-488-935.

मेरे हाँ तेरे ना का जवाब नहीं। बहुत ही खूबसूरत सा एक तो गाना था जिसे आपने सुना सनराइज रेडियो पे 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुनते हैं पूरी दुनिया में। इसके अलावा आप सुनते हैं 100.6 एफएम पे कालदरडेल और वेस्ट यॉर्कशायर के इलाकों में। डीएबी के जरिए आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड, कीटली, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हालिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन और मिल्टन कीन्स में। और बहुत जल्द जी हाँ जी 2nd of September को लॉन्च कर रहे हैं हम लंदन में भी, वेस्ट लंदन में आप सनराइज रेडियो को सुन पाएंगे। तो याद रखिएगा, भूलना नहीं है, वेंसडे को 2nd of September सनराइज आ रहा है वेस्ट लंदन में, आपके करीब, आपके बिल्कुल पास और हमेशा हमेशा रहने के लिए। सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो को। और आज भी जो हमारा साथ निभा रहे हैं, हमारे साथ साथ हैं, आपका बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। इस घंटे में आपने बहुत ही प्यारे मोहब्बत के साथ हमारा साथ निभाया, हमारे हम सफ़र बने, अपनी दुआओं से और प्यार से हमें नवाजा। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपसे मुलाकातें करके और ये जान करके आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं और गीतों को एंजॉय कर रहे हैं। सुनते हैं माला को, दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे लेकिन कौन सुनता है दिल की। हाँ, दिल की तो मान लेते हैं लेकिन दिमाग की कोई नहीं मानता। बड़ी महंगी पड़ेगी ये जुदाई, किसी से कोई प्यार न करेगा।

0: दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। माला जी की सदा बहार आवाज में ये बहुत ही प्यारा गीत हमारे बचपन की याद थी और आपकी यादों को भी ताज़ा किया। बहुत अच्छा लगा कि आपको ये गीत अच्छा लगा। मिस्टर मिसेस हुसैन आप भी सुन रहे हैं, आपका मैसेज मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को सुनते हैं हमेशा, अपनी दुआओं से नवाजते हैं अपने तमाम साथियों को, सनराइज़ की टीम को और हमारे सामने इनको ढेरों ढेरों ढेरों दुआएँ भेजी हैं और जुमा की मुबारकबाद पेश की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा है कि दौरान इस गीत के दौरान हमें तीन बहुत ही खूबसूरत हस्तियों ने फ़ोन किया और जिसका भी फ़ोन हमने उठाया धर्म से उन्होंने रख दिया। वाजिद भाई से बात हुई लेकिन रुखसार भाई आपने दो बार किया, मैंने जो ही उठाया आपने रख दिया। शायद आप जल्दी में थे या आपने सोचा कि चलिए जी हमारी आप ही आज बिजी हैं, आपने रख दिया। फिर इसके अलावा जीत कौर बहना आपने भी फ़ोन किया, आपने भी जब आपका फ़ोन उठाया तो आपने भी रख दिया। भाई ये क्या हो रहा है आज हमारे साथ, आप ऐसा क्यों करते हैं? थोड़ा सा इंतज़ार तो कर लीजिएगा ना, जब आप आते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा। हम आते हैं ना आपके पास, बातें करते हैं आपसे, इसीलिए तो हम यहाँ पे मौजूद होते हैं कि आपसे बातें कर सकें। गाने तो हम सुनते रहते हैं घर पे भी गाड़ी में भी, तो वो तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपसे आपका प्यार बटोरना, आपसे दुआएं लेना हमारे लिए बहुत अहम होता है। तो चलिए कोशिश करेंगे कि आप जब भी कॉल आए जल्दी से उसे उठाएं और आप जल्दी से हमारे से बात कर सकें। इस घंटे को इख्तिताम पहुंचाने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ साथ बहुत अच्छा लगा। और अब दूसरे घंटे में भी आपसे बातें होंगी, आपसे मुलाकातें होंगी, आपकी डेडिकेशंस होंगी, आपके पैगाम होंगे और यूं ही ये प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा आपके संग संग आपके साथ साथ। और ऐसा है कि मैं आपसे बातें कर रही हूं और हाजरा जी भी आई और उन्होंने भी एकदम से फ़ोन रख दिया जबकि मैं बात ख़त्म करने वाली थी। चलिए आप हमारे साथ खेल खेलते हैं तो खेलते रहिए। मिलते हैं खबरों के बाद।
1: To the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
2: From the Sky News Centre at midday. Authorities in Nepal say they've rescued 121 tourists following Wednesday's devastating flash floods. None of them are from the UK, though. 33 Britons are unaccounted for. Fears of another wave of water caused by an overflowing mountain lake are hampering the rescue effort in both Nepal and Tibet. Rosalind Gabriel from World Vision says the situation on the ground is terrible.
3: After those massive amounts of water came through, they've deposited huge amounts of mud, and there's homes that have either been washed away or and now completely covered in mud. We're still seeing communities completely isolated due to the amount of bridges that have been taken out.
2: Cars have been torched during a vigil for one of the men killed in a wrong-way crash near Middlesbrough. They were satellite in Haswell in County Durham last night. So-called cowboy builders are to come under tougher scrutiny. Under new government plans, traders will be able to sign up to a new code, which will show they meet certain standards. A new payment system will also allow customers to avoid upfront costs by linking payments to projects milestones. Kate Dearden is the Minister for Consumer Protection.
4: Consumer detriment in this sector in 2024 reached £10.3 billion. That's a significant amount of money that people are losing. So having the app launching next week and the code over the coming months will provide that support to people.
2: The police inspectorate's warning problems with the gun licensing system are putting people in danger. It says there's a postcode lottery in the levels of scrutiny faced by people applying for permits. The bank holiday weekend looks like it'll be both wet and windy. Forecasters are warning of flooding with heavy rain predicted for England. And London's Science Museum wants to set a new world record for the most Star Trek Vulcan hand salutes performed at the same time. It involves separating your fingers into pairs, making a V in the middle. The record attempt will take place during the museum's Star Trek Late Night on September the 8th, marking 60 years of the show. That's the latest. I'm Jenny Barsby.

बहुत जताते हो प्यार हमसे, करोगे कैसे निभाह हमसे? जी हाँ जी, अब बताओ जवाब दो। बहुत ही खूबसूरत सा गीत था, हिट ऑफ द आवर में आपने सुना। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आन पहुंचे हैं। आप सभी का खैर मकदम है। जी आयो ने खुश आमदीद एंड गुड आफ्टरनून। जुमा की एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया, पहले घंटे में आपने बहुत ही प्यार और मोहब्बत और दुआओं के साथ हमारा साथ निभाया। आप हमारे हम सफ़र हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ ये सफ़र तय करना और आगे बढ़ना, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना। आपके संग ही हमें अच्छा लगता है और आपसे बातें करना, आपसे मुलाकातें करना, वो तो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा हो जाता है जब डबल डबल हो जाती है खुशी हमारी, बढ़ जाती है आपके आने से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जो कि हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं और जिनकी कॉल्स मिस हो गई हैं उनसे माफ़ी चाहते हैं। रुखसार भाई, आपकी कॉल मिस हो गई। जीत कौर बैना, आपकी कॉल भी मिस हो गई। मोहम्मद बिशारत भाई, आपकी कॉल भी मिस हो गई। बहुत अफसोस है इस बात का कि आप लोगों से बात नहीं हो पाई। मैंने तो कोशिश की थी लेकिन शायद आपके पास इतना टाइम नहीं था, आप ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सके। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास तकरीबन 2 घंटे बाकी हैं। आपके पास वक्त हो, आपके पास चंद लम्हे हो तो आप आ सकते हैं 01274306666 पे। कोशिश करें कि आपसे बातें भी हो सकें, मुलाकातें भी हो सकें और आपसे दुआएं भी हम बटोर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी प्यारी सी बहन हाजरा जी। जी हाँ जी, आपसे आखिरकार बात हो ही गई। बहुत अच्छा लगा, हमेशा की तरह आपकी दुआएं पाई, आपका प्यार पाया। ऐसा लगा कि जैसे कि बड़ी बहनें आपको, वो कहती है ना कि बड़े ही प्यार और मोहब्बत के साथ आपको पकड़ के जब भी डाल के प्यार मोहब्बत से दुआएं देती है ना, बस बिल्कुल वैसे ही महसूस होता है जब आप आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। आपकी दुआएं बहुत ज़रूरी होती हैं हमारे लिए और आप जिस प्यार और मोहब्बत का इजहार करती हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, हमारे दिल को छू जाता है। अच्छी लगी आज भी आपकी बातें। आपने कहा कि मुझे आज शक था कि शायद आज तुम नहीं आओगे, तो मैं ना, वो मेरा दिल जो था ना वो मर सा गया था। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसी बात हो। अगर हम ना भी आते तो अल्लाह आपको सलामत रखे, आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। लेकिन आपने कहा कि जो ही आपने हमारी आवाज़ सुनी आप फिर से ज़िंदा हो गई। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको हमेशा हमेशा सलामत रखे। आप यूं ही हंसती मुस्कुराती रहें और हम पर अपना प्यार और दुआएं लौटाती रहें। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके। हमारे प्यार से भाई वाजिद भाई, आपसे भी बातें हुई। हमेशा की तरह आपने बहुत इज्जत प्यार और मोहब्बत के साथ अपने तमाम दोस्तों को दुआ सलाम भेजा है, जुमा की मुबारकबाद पेश की। हम गीत भी ज़रूर लगाएंगे लेकिन हमेशा हमेशा आप याद दहानी कराते हैं कि आप कितना अरसा से हमें सुनते आ रहे हैं और हमेशा अपनी दुआ में हमें याद करते हैं। ये तो बहुत ही हमारे लिए अहम बात है कि आप हमेशा हमें दुआ में याद रखते हैं। यकीन मानिए आप हमारी दुआओं में भी हमेशा होते हैं। हमेशा आपकी सेहत याबी के लिए हम दुआ करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा भाई एक रोज़ आए और खुशी खुशी हमें बताए कि मैं आज ठीक हूँ, आज मैं खुश हूँ, मुझे ज़िंदगी की वो खुशियाँ मिली जो कि मैं चाहता था। यही हमारी दुआ है। आप भी सब्र कीजिए, हिम्मत कीजिए, कोशिश कीजिए तो अल्लाह आपको ज़रूर नवाजेगा इन तमाम चीज़ों से इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और रुखसार भाई, क्या करते हैं आप भाई? आप आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, ये क्या आप क्यों हमारे साथ मजाक करते हैं? आइएगा ज़रूर, बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करके। तो आपके पैगामात भी होंगे, आपके लिए गीत भी होंगे, आपके लिए डेडिकेशंस भी होंगी। सुनते रहिएगा सनराइज़ रेडियो को 103.2 FM पे। इसके अलावा आप

0: शहरों से मिलता है, मुझे यकीन है कि आपसे भी मिलेगा। आपका हमें इंतज़ार रहेगा, बस थोड़े दिनों की बात है। इंशाल्लाह आपसे बातें भी होंगी, मुलाकातें भी होंगी और हम आपके बिल्कुल करीब आ रहे हैं वेंसडे को, 2nd of September को 12 बजे। जी हाँ जी, नोट कर लीजिएगा, 12 बजे वेंसडे को ज़रूर आपके पास आ रहे हैं और हमेशा के लिए आ रहे हैं। ये नहीं एक दिन के लिए, दो दिन के, हमेशा के लिए 24 आवर्स आपके साथ रहेंगे। सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो को। ऐसा है कि टाइम बताते हैं और फिर ब्रेक लेते हैं और एक घूंट पानी भी पी लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का, जी हाँ जी, इंग्लैंड का टाइम जो है, बर्तानिया का टाइम है 13 minutes past 12। 13 मिनट हो चुके हैं 12 बजकर। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के उस पार।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 Darfield Street ऑफ लमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
4: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74-735 043.
5: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
6: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
5: We're not having that, are we?
6: No. Oi, hear that? It's water and cans.
7: And fix those drips and drops.
8: And take shorter showers, yeah?
9: Because when we work together,
10: it all adds up.
11: So come on, you lot. Search Let's Save Water.

तेरे इंतज़ार में ज़िंदगी जो अजाब बन के रह गई। बहुत ही खूबसूरत गाना मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ में आप सुन रहे थे। आपने सनराइज़ रेडियो पर 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे और 100.6 एफएम पे आप सुन रहे हैं, जो है काल्टरडेल में और वेस्ट यॉर्कशायर के इलाकों में डीएबी के जरिए ब्रैडफोर्ड, केटली, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन और मिल्टन कीन्स में बहुत जल्द आने वाले हैं। इसके अलावा एक और खुशखबरी है, जी हाँ जी, लंदन वालों के लिए, जी हाँ जी, लंदन वालों के लिए अक्रॉस वेस्ट लंदन के इर्द गिर्द के इलाकों में हम लॉन्च करने वाले हैं 2nd of September को 12 बजे दोपहर के, वेंसडे को हम आ रहे हैं लंदन में भी। तो सुनते रहिएगा सनराइज रेडियो को और साथ निभाइएगा हमेशा की तरह जैसे कि आप निभाते आ रहे हैं। उम्मीद और यकीन है कि लंदन वाले भी हमारा साथ यूं ही निभाएंगे और सनराइज की नशरियात को पसंद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जो कि हमारे प्रोग्राम की जीनत हैं, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं और आपके पैगाम और डेडिकेशन का सिलसिला भी अब हम शुरू करते हैं। आज जो है कि सबसे पहले एक तो नामालूम बहना थी, उन्होंने नाम नहीं बताया, बहुत ही प्यारी और मीठी आवाज़ की मालिक थी, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें की उन्होंने, प्रोग्राम को सराहा और हमें दुआएं दी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आने वाला गीत उनके नाम करेंगे, उन्होंने जिस फिल्म का गीत सुनना चाहा मैं तलाश कर रही हूँ, अभी तक तो नहीं मिला, जो ही मिला आपके नाम ज़रूर लगाऊंगी। याद अफ्रीका प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्यारे से भाई हीरा खान जी, आपने प्रोग्राम में शिरकत की थी और आपने अपने तमाम दोस्तों को, तारिक जुल्फी भाई को और महबूब इलाही को और आपके नए, जी हाँ जी, आपकी टीम में, आपकी लिस्ट में हमने एक नया नाम शामिल किया, नया नाम, आपके शायद दोस्तों पुराने हैं लेकिन आपने उनका नाम आज हमें दिया है, चौधरी मेहरबान जी, हाँ, उनके लिए आपने गीत सुनना चाहा है और उन्हें दुआएं भेजी हैं, जुमा की मुबारकबाद पेश की है। इनके साथ साथ आपने महबूब इलाही को, वाजिद जोहरस फील्ड में हैं, चौधरी मुजफ्फर को, अब्दुल कयूम फ्राइजिंग हॉल में हैं, उनको भी, तारिक जुल्फी भाई को भी और मलिक इसहाक को भी, अयूब चौहान को जो मैनचेस्टर में हैं, जावेद मीर भाई को, चौधरी आसिफ रियासत को, सुल्तान महमूद भाई कराची वाले हैं, उनको भी सलाम दुआ पेश किया है और जुमा की मुबारकबाद पेश की है, चौधरी फरियाद भाई को भी, सफीउल्लाह भाई को भी, शकील भाई को भी जो बरले में है, नवीद राणा भाई को भी और वलायत खान को भी, आमिर शहजाद को भी और उसके अलावा परवेज़ खान को और राजा वकास को भी और जितने भी आपके दोस्त अहलो अबाब सुन रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत दुआएं और जुमा की बहुत मुबारक हमारे भाई हीरा खान जी की जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने का हमेशा की तरह। तो नदीम भाई, आपका गीत हमें मिल गया है, वो आपके लिए हम लगाएंगे इस गीत के बाद, सुनते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया याद आफ्रीका। वाजिद भाई, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप तमाम के लिए गीत आ रहे हैं, सुनते रहिएगा, साथ साथ रहिएगा। फिलहाल ये गीत जो है हीरा खान जी और आपकी तमाम टीम के लिए, आपके दोस्तों के लिए और हमारे तमाम सामीन के लिए और तमाम दोस्तों के लिए जो कि हमारे प्रोग्राम की जीनत हैं, उन तमाम के लिए और आपके लिए भी है।

0: घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, ये हुआ ना प्यार। जब ठान लो तो फिर करके दिखाओ। बहुत ही खूबसूरत गीत था और बहुत ही प्यारा गीत, हमारा मनपसंद गीत, आपका मनपसंद गीत। हीरा खान जी, आपका भी मनपसंद गीत है तो आपके नाम किया, आपके दोस्तों की दोस्तों के नाम किया, आपकी जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, जो कि हमारे महफिल की रौनक है, हमारी महफिल की जो जान है वो आप हैं, और आपके खूबसूरत नामों से ही हम अपने इन गीतों को सजाते हैं और अपने प्रोग्राम को चार चांद लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जी हाँ जी, जीत कौर बहना आपसे बात हो ही गई आखिरकार। बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह आपसे बात करके। आप बहुत प्यारी हैं, आप बहुत अच्छी हैं, सभी के लिए दुआएं लेकर आती हैं, सभी को दुआएं देती हैं, और आपका दिल भी बहुत ही अच्छा है। आप सभी को प्यार और मोहब्बत के साथ याद करती हैं और सभी के लिए दुआएं भी करती रहती हैं और प्यार भी बहुत प्यार करती हैं आप सनराइज़ की टीम से भी और अपनी फैमिली से भी। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपका साया हमेशा आपकी फैमिली के सर पे कायम रखे, और जो दुख आपको अल्लाह की जानिब से आया है वो तो कोई हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे, और इतना सब्र दे कि आप वो दुख है, वो कमी जो है उसको बर्दाश्त कर सकें और अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ा सकें। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यादावरी का। तो बढ़ते हैं जल्दी से, ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जो गीत आ रहा है उसकी फरमाइश हमारे भाई जी हाँ जी मंसूर भाई, छोटे भाई जो है, जिनसे आज पहली बार हमारी मुलाकात हुई डायरेक्ट। जी हाँ जी, वैसे तो हम सब उन्हें जानते हैं, उनसे बातें भी होती रहती हैं, उनके सुनते भी रहते हैं, लेकिन आज डायरेक्ट बात हुई, बहुत अच्छा लगा। आपने जिस गीत की फरमाइश की थी, मुझे लगता है ये वही है शबीर कुमार की आवाज़ में है, तुमने दी आवाज़ लो मैं आ गया, आ रहा है आपके लिए कमर्शियल्स के बाद। सुनते रहिएगा, साथ साथ रहिएगा, ये गीत आप तमाम सामेन के लिए भी है। बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब, मिलते हैं, आते हैं थोड़ी देर में।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative. Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
4: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dampukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chooza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant. Tradition, taste, and something new.

0: गया।
1: पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। शबीर कुमार की खूबसूरत आवाज में ये प्यारा सा गीत हमने अपने बहुत ही प्यारे छोटे भाई जी हाँ जी मंसूर जी हाँ नदीम मंसूर आपकी फरमाइश पे पेश किया था। यकीनन आपने सुना होगा और आपके साथ साथ हमारे सामने ने भी इस गीत को ज़रूर इंजॉय किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जो कि हमारे साथ हैं, हमारे हम सफ़र हैं 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे आप सुनते हैं पूरी दुनिया में 100.6 FM पे आप सुन रहे हैं अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर और कालजरडेल के इलाकों में डीएबी के जरिए ब्रेडफोर्ड कीसली इल्कलिस किप्टन लीज हैलिफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्नली डार्विन नेल्सन एक्रिंगटन और मिल्टन कीन्स में बहुत जल्द आ रहे हैं हम। इसके अलावा वेस्ट लंदन में भी लॉन्चिंग हो रही है 2nd of September को 12 बजे जी हाँ जी आफ्टरनून को 12 बजे हम लॉन्च कर रहे हैं और लाइव जा रहे हैं सनराइज रेडियो पे लंदन में। तो लंदन वालों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम आपके पास आ रहे हैं, हम आप सबको खुश आमदीद करेंगे और हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ साथ रहेंगे सनराइज रेडियो पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जो कि हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं। आप तमाम साथियों की डेडिकेशंस और पैगामात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगला गीत जी हाँ जी अगला गीत जो आ रहा है वो गीत मैं सुनवाना चाहूँगी। मेरी लिस्ट किधर गई? अगला गीत मैं सुनवाना चाहूँगी स्मीना जी आपको और आपके तमाम फैमिली को और आपके तमाम टीम को जिसमें शामिल हैं शकीला हैं नसरीन हैं जुबी हैं आबी हैं नायला हैं और रुखसाना हैं कौसर हैं नसरीन हैं और जितने भी दोस्त इस वक्त आपके साथ काम कर रहे हैं उन तमाम के लिए ये आने वाला गीत और यही गीत मिस्टर मिसी हुसैन आपके नाम भी करना चाहेंगे। इस उम्मीद और यकीन के साथ आपको अच्छा लगेगा और यही गीत हम नाम करना चाहेंगे। मोहम्मद बशारत भाई आपसे बात तो नहीं हो पाई, आप फ़ोन कर रहे थे काफ़ी देर आप होल्ड पर रहे फिर भी आपसे बात नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यादावरी का, आपकी हाजिरी लग गई। ये गीत हम आपके नाम भी करने जा रहे हैं इस उम्मीद और यकीन के साथ कि हमारे सामने भी इसे एंजॉय करेंगे।

0: तू अकेला नहीं और भी है यहाँ गम के मारे हुए, बहुत ही खूब कहा है इन्होंने मोहम्मद रफ़ी जी ने कि हर इंसान, जी हाँ जी, जो आपको हंसता मुस्कुराता नज़र आता है अगर आप उनके दिल में झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख छुपा होता है। हर इंसान किसी ना किसी मरहले से गुजर रहा होता है। हर इंसान के दिल जो होता है ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं और वो कहते हैं ना बुरा वक्त आता है, लेकिन ये ज़िंदगी की आजमाइशें हैं जो कि अल्लाह पाक हम सब पर, हमें सबको इन आजमाइशों से गुजारता है और हमें बस सब्र और हिम्मत करनी होती है। तो ये सब जो वक्त जो बुरा है वो भी गुजर जाता है और जो अच्छा है वो भी गुजर जाता है। तो बहुत ही उदास गीत था, थोड़ा स्लो गीत था, इसने आपको भी उदास कर दिया। तो चलिए जल्दी से एक और बहुत प्यारा सा, ये है कवाली नवाब मोहम्मद महेंद्र कपूर की आवाज़ में, लेकिन नहीं टाइम बताते हैं और फिर छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आप सुनेंगे तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, ये भी नामुमकिन को मुमकिन करना चाह रहे हैं। तो चलिए आपको टाइम बताते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ी में यूके का जो टाइम है वो है 12:43 हो चुके हैं 12 बजकर। तो बढ़ते हैं ब्रेक की जाने, मिलते हैं इसके बाद।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yog Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226, Mirdosh Kumar 07899055525, Gurkirit 07886545970, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
6: 24 hours a day.
4: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
7: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। जी हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत सी कॉलिन वा गीत आपने सुना, आपको बहुत अच्छा लगा, आप ही के लिए था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जो कि प्रोग्राम को सुन रहे हैं, शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जीत कौर बहना आपका, रुखसार भाई आपका, आखिरकार आपसे बात हो गई इतनी मसरूफी के बावजूद आपने हमें याद किया और अपनी दुआओं से नवाजा, सिर्फ मुझे ही नहीं हमारी सारी टीम को भी और तमाम सामेईन को भी आपने ढेरों दुआएं दी हैं। आपके टीम के लिए, आपके दोस्तों के लिए हम गीत लगाएंगे थोड़ी ही देर में। फिलहाल ये गीत हम लगाने जा रहे हैं मिसेस कौर आपके लिए, और यही गीत हम लगाने जा रहे हैं हाजरा जी आपके लिए। उम्मीद और यकीन के साथ कि आपको अच्छा लगेगा। वाजिद भाई, यही गीत आपके लिए और आपके तमाम दोस्तों के लिए, और तारिक जुल्फी भाई आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों के लिए, आपकी तमाम टीम के लिए, हीरा खान जी के लिए, मोहम्मद इसहाक भाई के लिए, महबूब इलाही के लिए, वाजिद जो हॉरस फिल्म में है उनके लिए, चौधरी मुजफ्फर के लिए, अब्दुल कयूम फ्राइजिंग हॉल में उनके लिए, अयूब जहान मैनचेस्टर में है उनके लिए, जावेद मीर भाई के लिए, चौधरी आसिफ रियासत भाई के लिए, सुल्तान महमूद कराची वाले भाई के लिए, चौधरी फरियाद भाई के लिए, सफीउल्लाह भाई के लिए, शकील भाई बर्लिन में उनके लिए, नवीद राणा भाई के लिए, चौधरी वलायत खान के लिए, तारिक भट्ट के लिए, कियानी मुदस्सर के लिए, परवेज़ खान के लिए, आमिर शहजाद के लिए, और जितने भी आपके दोस्त, आपके अहबाब और आपके जाने वाले सुन रहे हैं उन तमाम के लिए, तारिक जुल्फी भाई की जानिब से और हमारी जानिब से भी आप तमाम के लिए, और हाजरा जी ख़ासतौर पर आपके लिए, मिसेस कौर आपके लिए। और मुझे उम्मीद और यकीन है कि ये गीत मोहम्मद बशारत भाई आपसे भी बात हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा कॉल करने का। अच्छा लगा कि आप प्रोग्राम को सुन रहे हैं, गीतों को इंजॉय कर रहे हैं, ये गीत आपके लिए है।

0: जिसे फूल समझा वही हार निकला, तेरी तरह झूठा तेरा प्यार निकला। वाजिवा, क्या शायरी थी और किस तरह से शायर ने बेवफाई का इजहार किया। बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही प्यारी आवाज़ में आप तमाम के लिए हमने पेश किया था, ख़ासतौर पर हाजरा जी आपके लिए किया था। आपने कॉल की और हमें पता चल गया कि आपको गीत अच्छा लगा, अच्छी बात है, आप ही के लिए था। और अगले घंटे में भी गीत आपके लिए ज़रूर लगाएंगे। यादाबरी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बात हो रही थी हमारे भाई रुखसार भाई से, आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। हमेशा की तरह आपने इतना प्यार और मोहब्बत जो है वो सनराइज़ की टीम को जो आप देते हैं उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो इज़्ज़त आपने मुझे दी, आपने खाला का एहसास मुझे दिया, वो मेरे लिए काबिले कद्र है और मेरे दिल में आपकी हमेशा इज्जत है और इज्जत रहेगी कि आप इतने प्यार और मोहब्बत के साथ आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझे अपने खाला समझते हैं। आपने कहा कि मेरा आपकी खाला का नाम भी शहनाज था और मेरी आवाज़ भी आपकी खाला के साथ मिलती जुलती है, तो मैंने कहा को चलिए मैं ही आपकी खाला बन जाती हूँ। बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा, आपने खाला बनाया। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और आपकी दुआएं पाके। आपके दोस्तों के लिए गीत हम अगले घंटे में लगाएंगे क्योंकि ये घंटा भी अब इख्तिताम को पहुँचने वाला है। चंद मिनटों में आप सुनेंगे जी हाँ जी इंटरनेशनल न्यूज़, और न्यूज़ के बाद हम फिर आएंगे आपके पास सनराइज़ रेडियो पे 103.2 एफएम पे। और हमारा नंबर है 01274306666। अगर आप डेडिकेशन करना चाहें, हमारे प्रोग्राम में शिरकत करना चाहें, हमारे गीतों को सुनना चाहें।
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
2: From the Sky News Centre at 1. Authorities in Nepal say they've rescued 121 tourists caught up in flash floods. Hundreds are still missing, though, including 33 Britons. The number of dead in the disaster there has passed 500. Cordelia Lynch is at a centre where they've been transporting those rescued by helicopter.
3: Some very badly injured, others just carrying what little belongings they have left. Very lucky, very grateful to still be alive, but there are also many grieving families here too.
2: A Middlesbrough MP's labelled the spate of violence in the region terrorism after cars were torched at a vigil for one of five young men killed in the A66 crash. Andy McDonald's claim comes as 200 extra officers are drafted in to help ease tensions. Since the collision that also claimed the lives of two police officers, there's been a double fatal house fire, stabbings and properties being rammed. Policing commentator Graham Wettone thinks he knows why.
4: I think we're seeing now the result of the successive government's policies around law and order. So that includes policing, justice system and a prison establishment. And I think there's a lack of a deterrent for many of these individuals. That's why we're seeing lawlessness increase.
2: The government hopes new measures will see an end to aggressive and intimidating bailiffs in England and Wales. They'll now be forced to sign up to an independent regulator for the first time. A coalition including senior police officers and the RAC has written to the Prime Minister, urging him to introduce alco-locks for repeat drink drivers. The devices stop a vehicle being started unless there's a clear breath test. Homes on two streets in a former mining village in Clackmannanshire are to be demolished because of historical mining damage. 97 properties in Colts Norton were evacuated in May after the ground started moving. A fresh yellow weather warning for heavy showers and thunderstorms has come into force, with forecasters warning of travel disruption and flooding. The Met Office alert covers large parts of England and Wales and runs until 9 o'clock tonight. That's the latest. I'm Jenny Barsby.

एक दर्शन करना सजना दा दीवानी फिर दी गली गली सफर इकबाल की आवाज़ में हिट ऑफ द आवर आप सुन रहे थे 103.2 एफएम पे और www.sunriseradio.fm पे भी आप हमें सुनते हैं पूरी दुनिया में 100.6 एफएम पे आप सुनते हैं वेस्ट यॉर्कशायर और कार्डिफ के इर्द गिर्द के इलाकों में डीएबी के जरिए आप सुनते हैं ब्रेडफोर्ड केसली इल्कली स्किप्टन लीड्स हालिफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्नली डार्विन नेल्सन एक्रिंगटन और बहुत जल्द मिल्टन केन्स में भी आप हमें सुन पाएंगे। इसके अलावा वेस्ट लंदन में लॉन्चिंग हो रही है 2nd of September को आफ्टरनून को 12 बजे ऑन डॉट जी हाँ जी 12 बजे हम आ रहे हैं वेस्ट लंदन में भी सनराइज की नशरियात जो है वो आप तक पहुँच रही हैं। लंदन वालों तैयार रहिएगा भूलना नहीं हम आ रहे हैं आपके पास हमेशा हमेशा के लिए। तो मुझे उम्मीद और यकीन है कि आप हमें बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ वेलकम करेंगे और हम आपको वेलकम करेंगे अपने सनराइज रेडियो पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप साथियों का जिन्होंने पिछले 2 घंटे हमारा साथ निभाया हमारे साथ साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और 3rd घंटे में हम आन पहुँचे हैं आपके संग संग आपके प्यार के साथ साथ आपकी दुआओं के साथ साथ यहाँ तक आन पहुँचे हैं प्रोग्राम के 3rd घंटे में। खुश आमदीद वेलकम जी आयानु गुड आफ्टरनून और एक बार फिर से जुमा की बहुत बहुत मुबारक आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम की जीनत को बढ़ाने का हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाने का हमारे दिल को खुश करने का हमारा दिल बाग बाग हो जाता है आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगता है हमेशा की तरह आपसे मिलना जुलना आपसे बातें करना आपसे मुलाकातें करना और आपसे दुआएं बटोरना अच्छा लगता है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया आप तमाम का। बढ़ते हैं डेडिकेशंस का सिलसिला जारी रखते हैं आपको सुनवाते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत सलीम रजा की आवाज़ में सदाबहार गीत। हमारे पास सिर्फ ये एक ही गीत है सलीम रजा की आवाज़ में और मुझे बहुत पसंद है मेरे कलेक्शन में भी है घर में भी मैं इसे बहुत सुनती हूँ तो आपके साथ मिलकर आज सुनते हैं और ये गीत मैं सुनवाना चाहूँगी अपने बहुत ही मोहतरम भाई अब्दुल कयूम भाई फ्राइजिंग हॉल से। आप किसे कुछ नासाज थी लेकिन अब आप ठीक हैं हमारी दुआएं आपके साथ हैं अल्लाह पाक आपको और भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए आप बिल्कुल ठीक हो जाएं फिट फाट हो जाएं और यूं ही अपनी दुआओं से और अपने प्यार से सनराइज की टीम को नवाजते रहे। आपका साथ हमेशा हम सभी को बहुत प्यारा होता है और आपके आने से हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत और बढ़ जाती है। बहुत शुक्रिया आपने अपनी तबीयत नासाज होने के बावजूद अपनी बहन को छोटी बहन को याद किया और बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ आपने प्रोग्राम में शिरकत की अपने तमाम दोस्तों को सलाम दुआ पेश किया और जुमा की मुबारकबाद पेश की बहुत शुक्रिया। ये गीत आपके लिए है और आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों के लिए यही गीत रुखसार भाई आपकी जानिब से आपके तमाम दोस्तों के लिए और आपकी जानिब से सनराइज की तमाम टीम के लिए और तमाम सामीन के लिए ढेरों दुआओं के साथ जुमा की दिली मुबारकबाद भी आपने पेश की है। आपकी जानिब से ये गीत होगा महबूब इलाही के लिए होगा फरियाद खान के लिए होगा आमिर शहजाद के लिए होगा हीरा खान जी आपके लिए होगा तारिक जुल्फी भाई आपके लिए होगा सफ़ीउल्लाह भाई आपके लिए भी रुखसार भाई की जानिब से तारिक भट आपके लिए भी मुदस्सर कयानी भाई आपके लिए भी चैम्पियन आपके दोस्त आपके जो कहते हैं ना वो खासम खास परवेज़ खान जी हाँ उनके लिए भी गीत होगा काशिफ भाई आपके लिए भी और कामरान भाई आपके लिए भी शकील भाई के लिए जहांगीर भाई के लिए राणा नवीद के लिए दीपा जी के लिए और नदीम मंसूर भाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रुखसार भाई आपकी जानिब से ढेरों दुआओं के साथ ये गीत आपके तमाम दोस्तों के नाम आपकी तमाम टीम के नाम और अब्दुल कयूम भाई फ्राइजिंग हॉल से आपके नाम है और क्या नाम है हाजरा जी जी हाँ आपके नाम भी करेंगे और यही गीत मोहम्मद बशारत भाई आपके नाम भी करेंगे। जीत कौर बहना फ़िलहाल ये गीत आप सुन लीजिए आपके लिए कोई और अच्छा सा गीत मैं तलाश करती हूँ और आपके नाम भी करूँगी और यही गीत वाजिद आपके लिए भी हजफील्ड में आप सुन रहे हैं ढेरों दुआओं के साथ इस उम्मीद और यकीन के साथ हमारे सामने इनके साथ साथ आप भी इंजॉय करेंगे। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों।

0: आएगी तुझ में रोशनी अपना किसी के नाम से, तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से। फूटेगी कोई किरण तुझको है एतबार क्यों बस एतबार पे और यकीन पे दुनिया कायम है। एतबार हो, सब्र हो और यकीन हो और दिल में सच्चे दिल से दुआ हो तो हो जाता है, ना अनहोनी भी होनी हो जाती है। बढ़ते हैं ब्रेक की जानी और आते हैं ब्रेक के बाद।
1: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
3: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3503।

जी हाँ जी, मार दर्दां दे कटारे, जख्म दे जिगर दे चीरे, की कीता तकदीरे, तू रोल दिते दोहीरे। जी हाँ जी, बड़ी सच्ची गल है। असी हीरिया नू रुलदियां ते पत्थरां नू जो कहंदे ने आसमाना ते देखिया, बस किस्मत दी गल होंदी है। किस्मत जिसका साथ देवे ते पत्थरां नू भी हीरे ते हीरिया नू पत्थर कर देती है। बहुत खूबसूरत गीत था और मुनव्वर सुल्ताना की आवाज़ बहुत कम सुनने में मिलती है। आपने सुना 103.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे पूरी दुनिया में सुनी जाती है ये आवाज़। तो बढ़ते हैं एक और खूबसूरत सा गीत, पाकिस्तान की याद दिलाते हैं आपको, सुनवाते हैं ये प्यारा सा पंजाबी का गीत। और ये गीत मैं नाम करना चाहूँगी, जी हाँ जी, अपने छोटे भाई वाजिद भाई आपके नाम। पंजाबी के गीत आपको पसंद हैं तो ये गीत आपके नाम करते हैं। और आपकी जानिब से हरिस्वी में आप सुन रहे हैं प्रोग्राम को हमेशा की तरह, और आपने अपने तमाम दोस्तों को दुआएं भेजी हैं, सलाम भेजा है, जुमा की मुबारकबाद पेश की है। आपके दोस्तों में शामिल हैं जी हाँ जी हीरा खान हैं, तारिक जुल्फी हैं, महबूब इलाही हैं, अयूब चौहान हैं, जावेद मीर भाई हैं, चौधरी आसिफ रियासत हैं, चौधरी फरियाद हैं, सफ़ीउल्लाह भाई हैं, तारिक भट्ट हैं, कियानी मुदस्सर हैं, परवेज़ खान हैं, आमिर शहजाद हैं, और जितने भी आपके दोस्त सुन रहे हैं उन तमाम के नाम ये प्यारा सा गीत। और हमारी जानिब से आप तमाम के लिए जो भी पंजाबी के गीत पसंद करते हैं आपके लिए है। और फ्राइजिंग हॉल में हमारे भाई हैं अब्दुल कयूम भाई आपके नाम।

किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, इत्थे रखो कहंदे ने ना जे कीता है ते करके दिखाओ। बहुत ही प्यारा गीत था, लेकिन गलती हो गई जी, असी समझे सी पंजाबी दा सी ते ए तो उर्दू दा निकलिया। कोई गल नहीं, बहुत ही प्यारा गीत था, इसने भी बचपन की यादें ताज़ा कर दी बहुत अरसा के बाद। ऐसा लगता है कि जब से मैं यहाँ पे यूके में आई हूँ ये गीत मैंने नहीं सुना बहुत अरसा के बाद। पाकिस्तान में बचपन में शायद सुना होगा। बहुत प्यारा गीत था, बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत इंजॉय किया। कोई बात नहीं, पंजाबी का गीत आपके लिए ढूंढते हैं और कोशिश करेंगे कि पंजाबी का ही हो। वाजिद भाई, चलते हैं, बढ़ते हैं इस गीत की जानेब। किशोर कुमार की आवाज़ में है और मेरी चमक छलो। हिना शौकत आपके लिए है, उस्मान भाई के लिए है, एजाज भाई के लिए है और शौकत भाई के लिए है और हमारे सामने इनके लिए किशोर कुमार की प्यारी सी आवाज़ में।

0: मौका है मौज मना लो, कब किसकी रही जवानी। बिल्कुल खूब, बिल्कुल सच कहा है इन्होंने। ना जवानी हमेशा रहती है और ना सेहत हमेशा रहती है, जो करना है अभी से कर लो। बहुत ही खूबसूरत गीत किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ों में, तो गाना आपने सुना 103.2 FM पे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं आपसे, आते हैं आपके पास अभी थोड़ी ही देर में।
1: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

ਡਾਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਗਿਆ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਮਸਤਾਨਾ ਕੋ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਥੇ ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਾਤ ਸੱਚ ਹੈ ਜੋ ਡਰਤਾ ਹੈ ਵਹੀ ਫਸਤਾ ਹੈ ਤੋ ਚਲਤੇ ਹੈ एक और गीत की जानिब मुझे उम्मीद है कि ये गीत मिसेस कौर आपको अच्छा लगा होगा और आपके साथ साथ यही गीत वाजिद भाई आपने भी पसंद किया होगा अब आपको सुनाते हैं एक और पंजाबी का गीत इनायत हुसैन भट्टी की आवाज़ में और ये गीत वाजिद भाई आपके लिए है और आपके साथ साथ आपके तमाम दोस्तों के लिए आपकी तमाम टीम के लिए जो इस वक्त सनराइज़ की नशरियात को सुन रहे हैं इस उम्मीद और यकीन के साथ हमारे सामीन भी इस गीत को इंजॉय करेंगे दुनिया मतलब दियो यार मतलब होवे ते प्यार भी कर दे जालिम दुनियादार

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: कमर न लचके हाय सजनिया, धीरे रे चलो मरी बांकी सवरिया। बहुत ही खूबसूरत सा गीत था मुकेश की आवाज़ में आपने सुना 103.2 FM पे और www.sunriseju.fm पे आप सुनते हैं पूरी दुनिया में। मैं हूँ शहनाज मंसूर आपके साथ साथ थी 11 बजे से लेकर अब तक। अब हमारा प्रोग्राम जब ख़त्म होने को आ रहा है, ये आखिरी गीत आप तमाम के नाम हमने किया, आप सबके जो कि हमारे प्रोग्राम की जीनत बने, जो कि हमारे हम सफ़र थे और जिनके साथ साथ हमने ये सफ़र तय किया, आप तमाम का बेहद बेहद शुक्रिया। हीरा खान जी आपका शुक्रिया, नदीम मंसूर भाई आपका शुक्रिया, वाजिद आपका शुक्रिया, रुखसार भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जीत कौर बहन आप बहुत बहुत शुक्रिया, हाजरा जी आपका भी शुक्रिया, तारिक जुल्फी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, मोहम्मद बशारत भाई आपका भी शुक्रिया, अब्दुल कयूम भाई फ्राइजिंग हॉल से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, स्मेना जी आपका शुक्रिया, हाजरा जी आपका शुक्रिया, मिस्टर बीसी हुसैन आप तमाम का शुक्रिया। आप तमाम हमारे हम सफ़र से, आप तमाम से बातें हुई, मुलाकातें हुई, बहुत अच्छा लगा, और जो खामोशी से हमारे साथ साथ चलते रहे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये गीत आप तमाम के लिए था और ये गीत भी आपके लिए है। जरा धीरे धीरे चलो मोरी बांकी सजनिया, हम तो धीरे धीरे चलते चलते यहाँ तक आ गए, लेकिन वक्त अपने अपने साथ किसी को लेकर नहीं चलता, हमें ही उसके साथ चलना पड़ता है। यहाँ तक पहुँचे आपके साथ साथ, आपके प्यार के साथ, आपकी दुआओं के साथ।
1: हंसनी मेरी हंसनी,
0: आज के साथ का, आपके प्यार का, आपके खुलूस का, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मानो के
0: आपके कीमती लम्हे जो आपने हमें नवाजे, उसके लिए मैं आपकी मशकूर और ममनून हूँ।
1: उड़ चली ओ हंसनी मेरी हंसनी,
0: आज की मुलाकात बस यहीं तक थी।
1: मेरे अरमानों के पंखे,
0: आपके साथ हमारे रिश्ते कायम रहे।
1: कहाँ उड़ चली,
0: आपका साथ हमें मिलता रहा, आपकी दुआएं हमें मिलती रहीं, तो मुलाकातें होती रहेंगी सनराइज रेडियो पर। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे 11 और 2 के दौरान। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खैर बांटिएगा और खैर समेटते रहिएगा। अगली मुलाकात तक आप सबका और हमारा अल्लाह ने निगेबान। बाय फॉर नाउ, गुड आफ्टरनून,
1: तेरा गजरा,
0: अल्लाह हाफिज।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 01274735043.

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: Jewelers 119-2121 Oak Lane, Bradford 9, telephone 01274-056-014 Sophie Jewelers.
1: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।
2: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
4: We're not having that, are we?
3: No. Oi, hear that? It's water and cans.
5: And fix those drips and drops.
6: And take shorter showers, yeah?
7: Because when we work together,
8: it all adds up.
9: So come on, you lot. Search Let's Save Water.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: गलिया गलिया घूमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organization's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this? Yeah.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 0127 473 5043.
3: The classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: जो काम करो तुम यूं ध्यान रखो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात मुझे देख रही है, अल्लाह इज वॉचिंग मी, और उसको मेरे हर हर अमल का, हर हर कौल का, हर हर सोच का पूरा इल्म है। ही हैज द फुल कंप्लीट नॉलेज ऑफ एवरीथिंग आई डू, एवरीथिंग आई से, एवरीथिंग आई थिंक ऑफ और इवन कंटेम्पलेट। जो कुछ भी मैं कर रहा हूं या कर रही हूं तो मेरे रब को उसके बारे में पता है। अब जब पता है तो ये देखो कि इससे मेरा रब राजी होगा या नहीं। इज माई अल्लाह गोइंग टू बी प्लीज विद द वे माई होल डे वेंट और नॉट। इंसान जो समझदार है, जो ही उसका दिन गुजरता है तो वो अपने हर दिन का मुहासबा करता है। जैसे एक समझदार बिजनेसमैन जो होता है, या किसी काम के अंदर भी एक बिजनेसमैन वो क्या करता है या क्या करती है कि हफ्ता गुजरता है या दिन गुजरते हैं तो दिन के आखिर में कहते हैं कि भाई आज के दिन की आमदनी कितनी हुई, खर्चा कितना हुआ, बिल्स, चाहे वाटर रेट्स हों, बिजली हो, जो वहाँ मजदूरी करने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं एम्प्लॉइज, उनकी तनख्वाहें निकाल कर अब आखिर में जो मुझे बचा इसमें मेरा नफा कितना हुआ और नुकसान कितना हुआ उसका मुहासबा करता है। अ सेंसिबल पर्सन एंड एन इंटेलिजेंट बिजनेसमैन और अ बिजनेस वुमन, व्हाट दे डू इज एवरी सो ऑफ्टन दे इवैल्यूएट what their business is doing. Sometimes it could be on a daily basis, some people on a weekly basis, some people on a monthly, some yearly. And you would say, this is how much income there is, but these are the expenditures. You've got the gas, you've got the electricity, you've got the lighting, you've got the employees. When I am to deduct all this, what I'm left with, is it profit? Or is there disaster over there? तो इसी तरीके से एक मुसलमान को भी अपने दिन के ऊपर मुहासबा करना होगा। ऐसे करते हैं, कुछ कॉल्स आई हुई हैं, कॉल्स ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं इस बात की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम।
1: ठीक है,
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर है, जज़ाकअल्लाह।
1: आपकी दुआ करता रहूँ, याद करता रहूँ आपसे। आपकी आवाज बहुत मिठास है। बस मेरा सिंपल सवाल यह है कि जो
0: आपका इसमें ग्रामी क्या है, नाम क्या है?
1: मेरा नाम मौलाना साहब नदीम खालिद है।
0: नदीम,
1: अलीफ
0: से बात कर रहा हूँ। ठीक है नदीम साहब, सब अब आप सबको पता चल गया, दुआएं कर रहे थे, भाई नदीम थे, खालिद।
1: मौलाना साहब मेरा सवाल यह है कि ये जो एक तो शराब पीना तो हराम है, बेचना भी तो हराम है, ये जो टैक्सी ड्राइवर है ये शराब वाले लोग उठाते हैं, क्या उनके लिए ये हलाल रोजी है, या डिलीवरी वाले, ऊबर वाले, जस सीट वाले ये उठाते हैं जॉब, तो या क्या हराम है या हलाल है?
0: ठीक है जी, ये सवाल पहले भी लोगों ने पूछा था और मैंने जवाब भी दिया था। मैं तो हमेशा सही जवाब देता हूँ और कुछ लोगों को अच्छा नहीं भी लगा, लेकिन ज़रूर इसका जवाब मैं दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, बस यही सवाल था। आप भी टैक्सी करते हैं?
1: नहीं, मैं डिलीवरी करता हूँ, तो मैं उठाता नहीं हूँ।
0: बस ठीक है, अच्छा करते हो, ठीक है इंशाल्लाह, बेहतर भाई नदीम। अच्छा भाई, इन्होंने सवाल किया, ऐसे करते हैं ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक के बाद वापस आकर इनके सवाल का जवाब भी देते हैं, और कुछ और लोग जो हैं वो भी लाइन के ऊपर हैं, उनकी लाइंस को भी इंशाल्लाह अटेंड करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ब्रेक ओवर ड्यू है, ब्रेक की तरफ जाते हैं।

0: ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती।

0: प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: तेरी गलियां
3: कुमी, ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
4: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
3: चाचा केड़ा चाचा?
4: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए, सिर्फ 2 पाउंड ना कानस लाने ना 1 पाउंड, छापा ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
4: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

0: के।
1: सुनो सुनो सरपंच साहब, जिन्नी दुखी हो के बंदे ने गल कही है गिया, मैनू लगता नहर वाले पुल ते पक्का कोई दी पसूरी पई है गिया।
0: सानू नहर

बात है शर्म की, जरा गौर से सुनिए। दंगल सुना रहा हूँ, जरा गौर से सुनिए। बात है शर्म